0: गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांवों से पकड़ लिए जाएंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
0: यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुठलाते थे।
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن
0: वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें दो चश्मे बह रहे हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ,
0: इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ,
0: इनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? वो हूरे हैं जो खैमों में मस्तूर हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आसमान से नीचे जमीन के ऊपर, घर में घर से बाहर, दुनिया के जिस भी कोने में, जहां कहीं मेरी आवाज पहुंच रही है, सबको कहेंगे तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम जनाब। दिस इज रेडियो पाकिस्तान FM 101 ट्यून इन वन अबव एंड मी योर आरजे अफजा चौधरी। वक्त हो जाता है 7:11 स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक। दिन है आज मंगल का, तारीख है 25 अगस्त 2026।

0: ओके जनाब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कैसी बख्शिश का समा हुआ फिरता है, शहर सारा मुसलमान हुआ फिरता है। एक बारूद की जैकेट और नारा तकबीर, रास्ता खुल्द का आसान हुआ फिरता है। जाने कब कौन किसे कहां मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान हुआ फिरता है। शब को शैतान भी मांगे है पनाहें, जिससे सुबह वो भी साहिब ईमान हुआ फिरता है।
1: रंग तेरे रंग, रंग तेरे रंग,
0: हमको जकड़ा है यहाँ जब्र की जंजीरों ने, अब तो ये शहर ही जिंदान हुआ फिरता है।
1: रंग तेरे रंग, रंग तेरे,
0: जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान हुआ फिरता है। दिल ने जब रब की तरफ देखा सुकून मिल गया, गोया तड़पता हुआ लम्हा।

कहते हैं ना कर नसीब से गिले इतने इंसान, जब अल्लाह राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। सोच को हमेशा मस्बत रखना चाहिए, तकदीरें तो मेरा रब बदलता रहता है।

खुशामदीद कहते हैं वापस जनाब आपको 0511111011 इज द डायलिंग नंबर, कॉल कर पाएंगे आप मुझे 8 बजे के उस पार। इसके अलावा SMS कर सकते हैं 4471 पे, तरीका बहुत ही आसान है, गो टू योर राइट मैसेज ऑप्शन, टाइप 101 स्पेस योर नेम योर प्लेस नेम योर मैसेज एंड सेंड दैट 4471।

आपकी खूबसूरत समातें रेडियो पाकिस्तान का साथ। वक्त हुआ जाता है 7:21। हमारा रास्ता खोटा ना कर सकेगा कोई, हम इस दयार को यूं मोतबर बनाएंगे। हर एक ख्वाब को ताबीर मिलेगी, हम इस जमीन पर दीप जगाएंगे। हमारा अज़्म है और रब्बे कायनात की ज़ात, हम इस यकीनो अमल से चमन को सजाएंगे। कठिन जो था उसे मुमकिन बना रहे हैं हम। सफर हमारा तरक्की का इस्तारा होगा। सो हमको रोके कहाँ दुश्मनों में इतना दम।

ओके जनाब, सेहत सेगमेंट में आज हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं? सेहत सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी सब्जियां जिनको हम हमेशा समझते हैं कि ये हमारे लिए सेहतमंद हैं और हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाती हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि क्या क्या फ़ायदों के साथ साथ कोई नुकसान भी शामिल करती हैं ये हमारी ज़िंदगी में या नहीं। पालक, बादाम और शकरकंदी, थोड़ा सा सोचिए, क्या कभी हमने इनके नुकसान भी सोचे? नेवर। पालक, बादाम और शकरकंदी को हम हमेशा मुफीद गजाओं में शुमार करते हैं। एक नई तहकीक ने इंकशाफ किया है जनाब कि आंतों की सोजिश की बीमारी जो है IBD, उसमें मुब्तला होने वाले वो अफराद ज्यादातर इस्तेमाल किन चीजों का करते थे? पालक, बादाम और शकरकंदी का। अमेरिका के UNC स्कूल ऑफ मेडिसिन की तहकीक है, आप उनके जर्नल पर जाके देख सकते हो।

इसके अलावा जनाब जो भी माएं मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं या जिनके पास भी छोटे छोटे बच्चे जिनके घर में मौजूद हैं, उनके लिए आज कुछ खास चीजें हम हाईलाइट करना चाहेंगे। और ये है कि छोटी उम्र में हम बच्चों की जो जिंदगी है उसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल कर देते हैं जो कि तब हमें नुकसानदेह नहीं लग रही होती, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब हमें महसूस होता है कि ये हमने इनकी जिंदगी में कितना बड़ा जहर घोल दिया जिसका अब कोई जो है वो इलाज नहीं है, उसको आप फिर रिवर्ट नहीं कर सकते। बहुत छोटी उम्र में आप बच्चों को चीनी खिलाना शुरू कर देते हो। अक्सर हमारी माएँ जो पुरानी माएँ हैं वो तो ये भी कहती हैं कि तुम लोगों को तो हमने बहुत सारी चीनी खिलाई, आज तक तुम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको बताएं जनाब कि साइंस कहती है कि जब आप छोटी उम्र में बच्चों को चीनी खिलाते हैं, आप जितनी भी अभी आप अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर जितने भी पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स हैं, अगर आप लोग देख लो या जो नई माएँ हैं वो अगर देख लें, मोस्टली लोगों को हमारी जो गर्ल्स हैं खासकर गर्ल्स कम्युनिटी सभी ऑलमोस्ट PCOS का शिकार हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट टाइप 2 डायबिटिक। ज्यादातर हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो टाइप 2 डायबिटिक हैं। और चीनी क्या करती है कि बच्चों की जो दिमाग की ग्रोथ है उसको बहुत ज्यादा मुतासर करती है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत उतनी स्ट्रांग नहीं बनती, वो उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती। हम बहुत जल्दी नमक और बहुत जल्दी पानी उनकी जिंदगी में शामिल कर देते हैं। क्या कहूं अल्लाह, चांद भी सोचे जलवा तेरा तौबा, कहीं ऐसा अंदाज न देखा। 10 से 12 महीने न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको हमें पानी नहीं देना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत वियर्ड लग रही होगी, लेकिन आज आप लोगों के लिए ये एक टास्क है कि इतने छोटे बच्चों को पानी क्यों नहीं देना चाहिए। कि आपने इंटरनेट आप सब लोगों के पास अवेलेबल है ना, आप लोगों ने खुद सर्च करना है, खुद आपने देखना है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालने हैं कि इतने छोटे बच्चों को हमें पानी क्यों नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जनाब नीदरलैंड की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर्स उनकी कयादत में होने वाली एक तहकीक जिसमें इंकशाफ किया गया है कि ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पुरानी अद्वियात क्या करती हैं, बच्चों में एक नायाब और जानलेवा दिमागी बीमारी आ रही है उसको थोड़ा सुस्त कर देती हैं। वैनिशिंग वाइट मैटर के नाम से एक बीमारी है जनाब जो कि बढ़ रही है, वेस्ट में तो बढ़ रही है, अभी हमारी तरफ उतनी नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, कम उम्र बच्चे जितने भी उनको मुतासर करती है। और इस बीमारी में दिमाग जो है वो एक सफेद मादे को दिमाग में मौजूद होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। इससे कुछ बच्चों को तो उतना नुकसान नहीं होता, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बीच में जिनको की जिस्मानी और जहनी सलाहियतें मुतासर होना शुरू हो जाती हैं, और बहुत बहुत शदीद अगर सूरत इख्तियार कर ले तो ये जानलेवा भी साबित हो जाती है। Well, जनाब यहाँ पर हैप्पी न्यूज ये थी कि जो पुरानी अद्वियात होती हैं ब्लड प्रेशर की वो इस बीमारी को थोड़ा कम कर रही है। लेकिन जनाब इन सारी चीजों तक पहुंचने से पहले हैं प्रिकॉशंस। आप प्लीज कोशिश किया करें कि जब भी आप बच्चों को कोई भी खुराक दे रहे हो तो आप पहले सोचो 10 दफा कि आप उसको क्या खिलाने जा रहे हो। 6 महीने की उम्र तक आपको उसको क्या देना है, 9 महीने की उम्र तक क्या देना है, 12 महीने की उम्र तक आपको उसको क्या खिलाना है, 2 साल उसकी डाइट की एक एक चीज को आप मॉनिटर करें। उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी सारी चीजें मॉनिटर करके देने की, और हेल्दी जनरेशन रास्ते में जरूर बन जाएगी। किसी का कहना है जनाब कि आज आप थोड़ा सा स्लो साउंड कर रही हैं, सब ठीक है, बेफिक्र रहें।
बस थोड़ा सा गला जो है वो मेरा ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगी रादर देन दिस कि मैं दोबारा से चीख चीख के बोलूँ और मेरा गला और ख़राब हो जाए, सत्यानाश हो जाए, स्यापा हो जाए। आज भी मैं सोच रही थी छुट्टी कर लूँ, फिर मैंने कहा कल मैंने इन लोगों को बोला था मैं छुट्टी नहीं करूँगी, और अगर आज मैं नहीं गई फिर ये लोग सोचेंगे कि नहीं, अब इसकी बात पर यकीन नहीं करना। जनाब 0511111001 इज द डायलिंग नंबर, 8 बजे के उस पर आप कॉल्स करोगे।

अभी जनाब आज के प्रोग्राम में सबसे बेस्ट एडवाइस हमारी क्या होगी एक दूसरे के लिए, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर ऑल क्वेश्चंस इन योर लाइफ. स्माइलिंग इज द बेस्ट रिएक्शन इन एवरी सिचुएशन. इन चीजों पर हमने फोकस रखना है, कुछ भी हो जाए बस स्माइल करना. अकेले बैठ के बेशक आप धाड़े मार के रोलो, जमीन पे पटाख के सर रोलो, जो करना है कर लो, और जब आप अपने कमरे से बाहर निकलो ना, एक स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए. और एक चीज अपने दिमाग में बिठानी है हर हाल में, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस कभी नहीं आती. दैट्स एन इम्पॉसिबल थिंग. बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव that you can and you will. Second thing, stay strong. Dream, believe in yourself and you will achieve. Iske ilawa janab, aapne kabhi give up nahi karna. A little progress each day, kuch na kuch wo zarur bada aapki zindagi mein add karegi. Be grateful. A grateful heart. You cannot even imagine कि वो कैसे काम करता है. वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है. वो बड़े बड़ी चीज़ों को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करता है ना, यू cannot even imagine. बस इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखें कि एक ग्रेटफुल हार्ट जो होता है, जिसमें हर वक्त तशक्कुर है, हर वक्त आप शुक्र कर रहे हो उस पाक ज़ात का जो भी वो आपको नवाज रही है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे वो एक इम्तिहान है चाहे वो एक ब्लेसिंग है, बस बी ग्रेटफुल. मेहनत करनी है और यकीन अपना उस पाकजात पे छोड़ देना है. कहते हैं गुड थिंग्स कम टू दोस जो कि अच्छा अच्छा सोचते हैं और अच्छा अच्छा करने की कोशिश करते हैं. गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल डेफिनेटली कम बैक टू यू. ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो और उसके बाद सोच रहे हो कि इस खड्डे के उस पार आपके लिए कामयाबी रखी है. नहीं, जब आप किसी के लिए खड्डा सोच रहे हो उस खड्डे के इस पार आप खुद भी खड़े हो. स्टे हम्बल. जहाँ आपने बहुत सारी मेहनत करनी है ना, वहाँ पे आपने खुद को काम और हम्बल रखने की कोशिश भी करनी है. ये एक ऐसी आर्ट है जो बहुत मुश्किल से आती है, खासकर उन लोगों की ज़िंदगी में जो कि स्ट्रगलर्स होते हैं. बट जिसकी ज़िंदगी में हम्बलनेस आ जाए ना, आप मेरे से लिखवा लो, किसी भी पत्थर पे बेशक लिखवा लो, उस इंसान की ज़िंदगी में सक्सेस आएगी, आएगी ही आएगी. This kindness makes you the most beautiful thing in the world. And again, मैं एक ही चीज को हाईलाइट करूंगी, keep smiling. Because of your smile, you can make your life beautiful. अपनी नहीं बाकियों की भी. Imagine you are going somewhere. आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, आपका दिन बहुत बुरा गुजरा है, बट यू आर स्माइलिंग. सेम टाइम पे कोई और आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, उसका दिन भी अच्छा नहीं गुजरा है. ही और शी माइट, अब यहाँ पे कहना चाहूंगी, हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़े डिजास्टर चल रहे हो, आपसे भी बड़े. हो सकता है आप खुद भी उनकी जिंदगी में एक डिजास्टर हो. But that smile on your face, हो सकता है कहीं ना कहीं वो weird

एक अपने लिए ऐसा इसको उर्दू में क्या कहते हैं यार, एक ऐसी पर्सनालिटी चूज कर लें अपनी जिंदगी में जो कि आपको लगे कि ये आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कॉम्पिटेंट है, इसका तो मुकाबला आप कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, बस दिल में दिमाग में बिठा लें, उसके बाद आपको उससे बेटर बनना है। जब तक आप ये वाली चीजें अपनी लाइफ में सेट नहीं करोगे ना, तो आपकी लाइफ में वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो चीजें रहेंगी नहीं। आप किस चीज के लिए कोशिश करोगे? क्योंकि इंसान जो है ना, इसकी नेचर इस तरह की है, जब तक कुछ भी ऐसा जिंदगी में नहीं आता ना, जहां जब तक ऐड नहीं होगा ना, जब तक आप खुद को ये नहीं मैसेज दे रहे हो अपने दिमाग को कि ये चीज जो है, ये एक लाइन है, इसको मैंने क्रॉस करना ही करना है, हर हाल में करना है, तब तक कैसे कर पाओगे? जब सोचा ही नहीं है, मेहनत कैसे करोगे?

the will to win, the desire to success, urge to reach your full potential. These are the keys, the main keys to unlock the door. Success ka nahi, personal excellence ka. But iske saath saath ek cheez aur hamesha yaad rakhni hai. Perfection is not attainable. But if you try, perfection कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि उसको हम कैच नहीं कर सके. थोड़ी सी एक्सीलेंस तो कैच कर सकते हैं ना. मैं कभी ये नहीं सोचती कि कोई भी जो चैंपियन है ना उसको हम उसकी विन से लाइक डिफाइन करते हैं. नहीं, मैं हमेशा उसकी जो हार, वो जीत है ना उसके पीछे की जो हार है, मैं हमेशा उसको लाइक फिगर आउट करने की कोशिश करती हूँ कि अगर ये इंसान यहाँ तक पहुँचा है, ये कितनी दफ़ा हारा होगा, ये कितनी दफ़ा टूटा होगा, ये कितनी दफ़ा गिरा होगा, और कितनी दफ़ा इसने कहा होगा कि नहीं बस ठीक है अब और नहीं होता. बट द ऑडेसिटी जो मुझे इंस्पायर करती है, जो मैं देखती हूँ हमेशा कि यार अगर इस उम्र में इस इंसान ने इतना अचीव कर लिया ना, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रहा होगा. ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसने इसको इतना मोटिवेट कर दिया है ना. अब इतना भी सैड नहीं होना यार, छोटी सी उम्र है, कहाँ जाएंगे हम. और ये हमेशा जब भी मैं ये वाला ट्रैक लगाती हूँ ना, ये 15 सेकंड वाला लग जाता है और फिर मैं ऑफेंड होती हूँ. बट आज मैंने भी ऑफेंड नहीं होना, कोई बात नहीं, दोबारा से ढूंढ लेते हैं.

हम आज मैंने डिसाइड कर लिया है, हम हमारा पूरा फोल्डर चेंज कर देंगे, हम पुराना कोई गाना नहीं चलाएंगे, हम सारे नए गाने लेके आएंगे। और ये वाला ट्रैक जो आप लोग हमेशा ही सुनते हो, ऑलमोस्ट मोस्टली इसकी रिक्वेस्ट आ जाती है। I think of this wonderful number, boy back right after this track, 051-111-000 and 101 is a dialing number. Messages kar rahe hain aap 4471 pe, tarika bahut hi aasan hai. Go to your right message option, type 101 space your name, your place name, your message and send that 4471. Ramiz hume join kar rahe hain. कि बचपन में हमने भी बहुत ज़्यादा चीनी खाई है। बचपन में हम क्या करते थे कि चीनी वाला पराठा चोरी बनवाते थे अम्मा से। अब अम्मा के सामने भी बनवाते तो वो कुछ ना कहती, क्योंकि हमारी पुरानी माएँ जो हैं, खासकर मतलब वो जनरेशन अलग ही लेवल था यार। मतलब कोई नुकसानदेह चीज़ भी है ना, अगर वो आप उनके बच्चे को पसंद आ रही होती थी ना, उनका बच्चा उससे खुश होता था, स्माइल आती थी ना उसके चेहरे पर, वो कहती नहीं ये तो मैं इन्हें लेके देनी ही देनी, मेरा बच्चा खुश हो रहा है इससे।

ये पसूरी का भांगड़ा वर्जन सुना है, उसको हम बैकग्राउंड में चलाएंगे। ओके जनाब, 7:54 स्टूडियोस की घड़ी के मुताबिक मंगल का दिन 25 अगस्त 2026। जो लोग अभी नहीं उठे हैं उनसे गुजारिश है, उठ जाएं, उठ जाएं, सूरज भी उठ गया, एक नई सुबह नई उम्मीद लेके आपकी जिंदगी में आ गया, आप उसको वेलकम नहीं करोगे? देखो जरा उसकी तरफ, कैसे वो रोज बेशर्मों की तरह आपकी जिंदगी में आता है, रोज रोज। कभी उसने टायर्ड फील किया? उसको देख के भी शर्म नहीं आती हमें। वेल जनाब, जितने लोग अभी जाग रहे हैं, जितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी सलाम, जितने लोग ड्राइव कर रहे हैं ड्राइव केयरफुली उनको भी सलाम, जो अभी तक बिस्तर में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और सोच रहे हैं बस 5 मिनट अभी उठते हैं, और 5 मिनट के चक्कर में और हम लोग पूरा दिन जाया कर देते हैं। वेल जनाब, शो है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं हूँ आपके साथ आरजे अफजा चौधरी। और क्या बात है, हम वक्त पे स्टूडियोज पहुंच गए थे।

वेल जनाब, किसी का कहना है कि सुबह उठते ही छोटी छोटी मुसीबतें सामने आ जाती हैं. हाँ हाँ बिल्कुल, सुबह उठते ही सबसे बड़ी मुसीबत तो ये आती है कि नाश्ता क्या करना है, आज दफ्तर जाना पड़ेगा. अम्मी को कैसे बताऊं कि मैं यूनिवर्सिटी और ऑफिस से छुट्टी करना चाह रहा हूँ. सबसे बड़ा खतरनाक जुमला तो ये आता है जब अम्मी की आवाज़ आती है, उठ जाओ भाई सुबह हो गई है, 8 बज रहे हैं, इंसान हो क्या? और फिर एक अब्बू की आवाज आती है, उठ रहे हो या मैं आ जाऊं? और इसके बाद बंदा ख्वाब में भी भाग रहा होता है.

और जितने लोग भी सुबह सुबह गाड़ी लेके निकलते हैं उनसे खुसूसी दुआ है उनके लिए, सॉरी, अल्लाह उनको ट्रैफिक से बचाए, और अगर ट्रैफिक से ना बचाए तो कम से कम साथ वाली गाड़ी वाले जो बंदे हैं उनके हॉर्न से बचाए। आई मीन सीरियसली, हमारी ऑडेसिटी है कि हम इतनी जोर से हॉर्न बजाएंगे ना अगले के कान फाड़ देंगे। मतलब हॉर्न गाड़ी में लगाया जाता है किसी इमरजेंसी के टाइम के लिए, थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए हमारे अंदर, हम नहीं रखते। हम कहते हैं कि बस ये लगा है तो ये इसलिए लगा है कि हम इससे हाथ नहीं उठाएं। पाकिस्तान में ट्रैफिक लाइट्स जो है ना, जब सबको रेड मिलती है सब रुक जाते हैं, और जैसे ही ग्रीन होती है ना, पहला बंदा हॉर्न बजाएगा, दूसरा बंदा हॉर्न बजाएगा, और तीसरा बंदा कहेगा भाई मैं कहाँ जाऊं, आसमान में उड़ जाऊं क्या? ऐसा लगता है सबको एक ही वक्त में पहुंचना है और सभी को इमरजेंसी है।

अलसन, अब एक छोटी सी न्यूज ब्रेक, न्यूज ब्रेक के उस पर वापस आएंगे और फिर ढेर सारी बातें, हल्ला गुल्ला मस्ती हम थोड़ी सी कम करेंगे, बट कोशिश करेंगे करें। 8 बजे के उस पर आपकी कॉल्स भी होंगी, तो अभी के लिए हम चलेंगे एक छोटी सी न्यूज ब्रेक।

SK. Okay, janab, khush aamadeed kehte hain wapis aapko program mein. 051-111-000-101 is the dialing number. कॉल कर सकते हैं आप. इसके अलावा आप एसएमएस कर सकते हो 4471 पे. तरीका बहुत ही आसान है. गो टू योर राइट मैसेज ऑप्शन, टाइप 101 स्पेस योर नेम योर प्लेस नेम योर मैसेज एंड सेंड दैट 4471.

0: ये मेरा मोस्ट फेवरेट ट्रैक है, इसको भी मैं सुनना चाह रही थी, बट अभी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी कॉलर कहाँ से?
1: रावलपिंडी से। आप कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या? खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है।
1: जी।
0: थोड़ा सा
1: आदाई।
0: जी जी आ रही, आ रही है। बताइए कौन और कहाँ से? क्या पैगाम लाए हमारे सामने के लिए? ओके कर लेते हैं हम होल्ड आपके लिए। ओके जनाब, डायलिंग नंबर एक दफा फिर से रिपीट कर दें, 051-111-0 and 101। And here we go for this wonderful number from the start. इस ट्रैक को सुनते हैं, इस ट्रैक के उस पार वापस आएंगे और आपकी ढेर सारी कॉल्स लेंगे। अभी स्टॉप कॉलिंग, इस ट्रैक के उस पार कॉल्स, प्लीज प्लीज प्लीज।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: खवातीन हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

0: मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूं, यह है कमाल मेरा।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में जैतून की पैदावारी सलाहियत को खुशहाली में बदलने के लिए पाकिस्तान नेशनल ओलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा किया है। नायब वज़ीर आज़म और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी क़यादत के साथ अमरीका ईरान तनाज़े में मजीद कशीदगी रोकने के इकदामात पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान ने सूडान की बिगड़ती हुई सूरतेहाल से निमटने के लिए मुसलसल आलमी राबताकारी, ताउन और बैन अल-क़वामी इंसानी कानून की मुकम्मल पासदारी पर जोर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में जैतून की पैदावारी सलाहियत को खुशहाली में बदलने के लिए पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा किया है। बैन अल-अक़वामी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज असम्बली सेक्रेटेरिएट में होगा। अफगानिस्तान में अस्करियत पसंद ग्रोहों की मुसलसल मौजूदगी और सरगर्मियों पर बैन अल-अक़वामी तशवीश बरकरार है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में जैतून की पैदावारी सलाहियत को खुशहाली में तब्दील करने के लिए पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद में पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान खुर्दनी तेल की मकामी पैदावार बढ़ाकर सालाना 40 करोड़ डॉलर की बचत कर सकता है। वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया कि पाकिस्तान चंद साल में खुर्दनी तेल की पैदावार में खुद कफील हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान में जैतून की काश्त और पैदावार के फरोग के लिए तावुन पर इटली की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद।
2: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे, क्यों जी कोई शक है क्या?

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम एफएम वालों, सुनने वाली तमाम खूबसूरत स्मार्टों को इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे, ज़िंदगी के रंगों को खूब इंजॉय किया जा रहा होगा और वहाँ उस एंजॉयमेंट में एफएम 101 को अपने साथ रखे हुए होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ आपके अपने आरजे ज़ुबैर शफीक, आपके अपने प्रोग्राम जी लेडीज़ लाउंज में, और लेडीज़ लाउंज में मेरा आपका साथ हुआ करता है हर मंगल की सुबह 11 से 1। करते हैं हम इस साथ में बहुत सारी बातचीत, मौज मस्ती प्लस हल्ला गुल्ला। ग्यारह बज के 4 मिनट हो चुके, आप तमाम को मैं खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ, वो तमाम जो के वेट कर रहे थे और वो तमाम जिन्होंने बस म्यूजिक को देखा, सुना, देखा नहीं सुना और रुक गए। ये यकीन दहानी कराती चली जाऊंगी कि आपका ये सुनना आपके लिए रायगा नहीं जाएगा, 2 घंटे में आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे, हंसी में, खेल में, मौज में, मस्ती में, लेकिन कोई ना कोई अच्छी बात आपके पल्ले पड़ जाएगी जो आपको लगेगा यहाँ आना रायगा नहीं था, रायगा नहीं था। जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उनको बताते चले कि आप हमारे से शामिल हो सकती हैं थ्रू दी कमेंट्स, थ्रू दी मैसेजेस, थ्रू दी कॉल्स। और मैसेज करने का तरीका क्या करना है, आपने मोबाइल की राइट ऑप्शन में जाइएगा, 101 स्पेस नाम पे कमेंट सेंड कर दीजिएगा 4471 पे 4471। कमेंट्स करने के लिए एफएम 101 लाहौर के पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट कीजिएगा, और कॉमेंट करके आजकल जरा मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैंने कहा जरा नए नए एक्सपेरिमेंट करें। चैट जीपीटी ने जिंदगी को कर दिया आसान, दूसरों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती आपको पता है, बहुत सारे कामों में यार मेरी पोस्ट बना दो, ये लिख दो, और इसमें ये चेंजिंग कर दो, अब चैट जीपीटी को जाके बताओ। लेकिन चैट जीपीटी भी बड़े होशियार है, कोई 10 दफा उसे चीजें बताओ ना, फिर जाके कहीं एक पोस्ट कोई सही बनाता है, है ना ऐसे। एनीवेज जी, बात करेंगे थोड़ी सी बहुत ही बाबरकत, खूबसूरत और बहुत ही रहमतों भरा महीना, रबीउल अव्वल का चांद नजर आ चुका, और इस चांद के नजर आने के साथ साथ वो तमाम खुशियां, वो तमाम उम्मीदें जिसके लिए हम इस दुनिया में आए, जिनके लिए इस दुनिया में हमें भेजा गया, उनकी आमद का महीना। आज थोड़ी सी बात करेंगे रबीउल अव्वल के चांद के हवाले से, उस खुशी के हवाले से। जैसे रबीउल अव्वल का चांद आया निकला ना, तो एक अलग सी खुशी आपको इंटरनल थोड़ी सी जो है ना वो मोटिवेशन और हैप्पी हैप्पी फीलिंग्स आना शुरू हो गई। जब हम छोटे होते थे ना तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी यकम से लेकर, बल्कि यकम से भी पहले, लेकिन यकम से लेकर तो पहाड़ियों का सिलसिला एक शुरू हो जाता था और चंदा इकट्ठा करने का सिलसिला एक शुरू हो जाता था, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आपका नाम लिया जाए और आप पर दुरूद ना भेजा जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और वो क्या कहते हैं कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी जुबान, खुदा ना करे

हमारे साथ रहिएगा, अच्छा आइएगा, कहीं नहीं यार, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। और वैसे भी दुरूद भेजना तो एक ऐसी सआदत है, एक ऐसी बरकत है जो आप दुरूद भेजते उन पर हो, रहमतें आप पर आती हैं, सुकून आपके दिल को मिलता है, जिंदगी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है, काम आपके सुलझ जाते हैं। है कोई ऐसी चीज कि आप दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ रहे हैं?

और इस ट्रैक को इंजॉय करें, होपफुली आप इसको इंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये एक वक्त में फेवरेट रहा है. आजकल के वैसे ट्रैक ऐसे ही होते हैं, कुछ टाइम के लिए इतने ज़्यादा फेवरेट होते हैं कि बस वो लग ही जा रहे होते हैं, और फिर एक वक्त के बाद आप उनको कहते हो कि अच्छा ये मैंने एक वक्त में ना ये ट्रैक बहुत ज़्यादा सुना था. इन उनमें से एक है ये. आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं FM 101 के ऑफिशियल पेज पे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा, बताइएगा और सुनिएगा. तो देखा आज मैंने इस तरह के ट्रैक लगाने हैं. आई लव इट. बस तेरी यार क्या हो, किसी के साथ दिल लग जाए और वो चला जाए. और बचपन की मोहब्बतें होती थी ना मोहल्लों में, दूर दूर से देखकर जब तक उसे बात करनी होती थी वो कुछ कर चुके होते थे. फोन कॉल तो होते नहीं थे, या होते भी थे तो घर में एक लैंडलाइन होता था. अपना जिनका घर होता है उनका तो फिर अपना होता है, और जो किराएदार से किसी को मोहब्बत हो जाए तो तेनू थकिया बिना नहीं दी यार वो बड़ा काम खराब है. आप सोचो किसी किराएदार से मोहब्बत हो गई है और बात भी नहीं हो पाई, आदत भी हो गई है और फिर उन्होंने कूच कर दिया. अभी तो हंसी की बात लग रही है ना, लेकिन क्या होता होगा. स्टिक अराउंड जी 04221111.

ये दुनिया झूठी, लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम

चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं कल एक कोटेशन पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था, जब तक आप किसी के जूतों में अपने पांव नहीं रखते, तब तक उसकी चाल पे जो है ना वो तनकीद ना करें। आपको नहीं पता कि वो किस तरह, नहीं ना समझ आई आपको ये बात, या ऊपर के समझदार लोगों से भी ऊपर की बातें होती हैं जो मैं यहाँ आके कभी कभी कर जाती हूँ। जब तक आप किसी के जूतों में अपने पांव नहीं डालते, तब तक उसकी चाल पे तनकीद ना करें। पता नहीं उसका जूता उसको कितना लग रहा है। हम लोग ना दूसरों की चीज़ों पे तनकीद कर रहे होते हैं। हम किसी की शादी में जाते हैं, खाने पे तनकीद कर देते हैं। नहीं पता होता कि उस बाप ने, उस माँ ने, उस भाइयों ने उस खाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। मतलब आप अगर सिंगल डिश पे भी आए ना, तो आपका 5-7 लाख का खर्चा कहीं नहीं गया। सिंपल शादी की अगर मैं मेन्यू की बात करूँ ना, सिंपल में भी, तो वो भी आपके 3-4 लाख रुपये कहीं ना कहीं लग जाते हैं जो वो अपनी बेटी पे लगाते हैं। और हर माँ बाप चाहेगा बेहतरीन करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे सामने 20 डिशेस भी होंगी ना, उसके बावजूद भी हम कहेंगे कि जी मीठा अच्छा नहीं था, सब कुछ ठीक था, पुलाव अच्छा नहीं था, चावल अच्छे नहीं थे। मतलब इस तरह की तनकीद चल रही होती है। अगर किसी ने सामान दिया तो कहा जाता है कि जी ये अच्छा नहीं था, फर्नीचर अच्छा नहीं था। आपको नहीं पता कि उस फर्नीचर को बनाने में कितना अरसा गुजर गया। अक्सर औकात तो जिंदगियां गुजर जाती हैं। बच्ची 25-26 साल की उम्र में, 25-26 साल की उम्र में उसकी शादी होती है, लेकिन उसके जहेज का सामान इकट्ठा करने में माँ बाप पिछले 25 साल लगा देते हैं, और वो 25 साल की मेहनत को हम एक लाइन में बोल देते हैं कि अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, सही नहीं किया। बाकी सब कुछ ठीक था, ड्रेस अच्छा नहीं था, ज्वेलरी अच्छी नहीं थी। और इन सब का नुकसान ये होता है कि उस उनकी जिंदगियों में तो खैर वो सब चीज़ें जो चल रही होती हैं, दिल आजारी हो जाती है। और आपको पता है कि आप कितना भी अच्छा कर लें, अगर आपने, आप कितने भी अच्छे हो जाएं, कितनी भी नमाज़ें पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ लें, तिलावतें कर लें, आप बहुत सारी चीज़ें भी करें, लेकिन अगर आपने इंसानियत का दिल दुखा दिया, किसी एक इंसान का दिल दुखाया ना, तो फिर वहाँ पर कोई माफ़ी नहीं है, जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम ने आपको सिखा दी हैं, आपको बता दी हैं कि जी माफ़ करो, आप दरगुजर करो, लेकिन फिर भी दिल आजारियाँ तो दिल आजारियाँ रह जाती हैं ना। आप किसी को माफ़ भी कर देते हो तो दिल से निकाल देते हो। वैसे आज का टॉपिक मैं ये लेकर आई थी कि क्या आप दिल से माफ़ कर पाते हो किसी को, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा चल, थोड़ा सा आहिस्ता, थोड़ा सा नरम चीज़ें लेकर चलते हैं। आज सुबह जब मैं उठी हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी बस डाउन थी, लेकिन फिर पहले मैंने सोचा नहीं प्रोग्राम नहीं करते, फिर मैंने कहा यार कोई गल नहीं, ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ आती, हम जब यहाँ माइक के सामने होते हैं तो हम कुछ और होते हैं, अपनी ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी भी यही है कि हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमने आके कुछ टाइम के लिए परफॉर्म करना है। वो परफॉर्मेंस जो है वो 50 साल की हो सकती है, 60 साल की हो सकती है, 65 साल की हो सकती है, कईयों की तो 30-40 साल की रहती है, और कईयों की इससे भी कम रहती है। उस परफॉर्मेंस में पॉइंट ये है कि हम कितना अच्छा कर जाते हैं, हम कितने अच्छे से वो किरदार निभा जाते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप अच्छे से निभा जाएंगे ना, मैं ये 2 घंटे का प्रोग्राम अगर आपके साथ बहुत हंसी खुशी खुशी कर जाऊँगी, आप भी याद करेंगे, आप कहेंगे जैसे खान बाबा ने मुझे कहा कि बहुत फनी लग रही हो आज। मैंने कहा जी ठीक है। आप पता नहीं लगने देंगे ना कि ज़िंदगी में कौन सी हर्डल्स चल रही हैं आपके रास्ते में, और आप अच्छे से बस चले जाएंगे, आएंगे, गुजारेंगे और चले जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बात में क्या कर रही थी, उस्मान साहब की हमें कॉल आई, और बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का। बात में कर रही थी कि बचपन की कुछ यादें, आपको क्या लगता है सबसे अच्छी चीज़। वैसे चलो पहाड़ियों की भी अगर हम बात करते हैं, तो कौन सा एक वो होता था बचपन में आप जो देखते थे, आपको शौक होता था ये देखें, जैसे वो होता था ना, जैसे अभी उन्होंने वो फौजियों की बात की, वहाँ पे वो एक चरखा काटने वाली जो है वो अम्मा भी बिठाई होती थी, फिर रुई के साथ उसके साथ उसका चरखा भी बनाया होता था, तो वो भी चल रहा होता था। मतलब
मतलब हर छोटी छोटी चीज में आपको नफासत नजर आ रही होती थी। फिर एक घर बनाया जाता था जिसमें मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें कुआं होता था और वो सारी चीजें। फिर एक जगह पे बर्फबारी हो रही होती थी और वो सारी चीजें भी चल रही होती थी। तो बस बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको नजर आ रही होती हैं और आप उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। जिंदगी की जहां मैंने बात की तो मैंने कहा है कि आप हर टाइम को इंजॉय करें, और इंजॉय आप किस तरह से करेंगे, इंजॉय आप इस तरह से करेंगे कि अपनी इंजॉयमेंट में दूसरों को जो है ना वो कहीं पे भी तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। वो क्या होता है कि मजाह में और मजाक में ना फ़र्क होता है, इन दोनों चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना ज़रूरी होता है। और जब आप इन दोनों चीज़ों पे गौर कर लेते हैं ना तो फिर ज़िंदगी आपकी भी आसान हो जाती है और आपकी वजह से दूसरों की ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाती हैं। हमारे साथ आपने रहना है 042-111-0101 हमारा डायलिंग नंबर है, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है,

0: अच्छा वो क्या उन्होंने मुझे कहा था, अख्तर राजपूत के हाँ पोता हुआ है, मुबारक आपको।
1: हाय मैं मर गई।
0: ओए ओए। लें जी सुनिए, जो नूरजहां साहिबा को सुनना चाहते थे।

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और यहाँ पे 11:47 हो चुके, और वो क्या कहती है, जे तू पत्थर मैं तेनू मोम बनावांगी। ओ नहीं जे मोम बनदा वो, अगर आप उस टाइम के गाने देखें ना, वो हीरोइन बेचारी इतनी कोशिश कर रही होती है, लेकिन सामने जो बंदा खड़ा होता है ना, वो ऐसे सोल्जर बन के खड़ा होता है, वो बिल्कुल ऐसे सोल्जर, उसने अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं देने और कहना लगी रहा मैं कोई फर्क नहीं पै रहा। इजाज साहब थे जी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। आपके बहुत सारे पैगाम भी मेरे सामने मौजूद हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगी। मैं पूछ रही हूँ बचपन की कोई एक याद शेयर करें आप हमारे साथ। नज़ीर खोसो हमारे साथ सोहबतपुर बलोचिस्तान से, बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं किसी में खामियां देखोगे तो खामियां नजर आएंगी, खूबियां देखोगे तो खूबियां नजर आएंगी। अगर तुम मस्बत इंसान हो तो इन्हें हमेशा खूबियों पर नजर रखोगे, और मनफी हो तो खामियां देखोगे। अल मुख्तसर, जो तुम हो वही दूसरों में देखोगे। अच्छी बात की आपने। फरहाद मेमन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल हैं, खुश हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैम तबस्सुम हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शफीक साहिबा। ज़ुबिया शफीक जी कहती हैं आपका प्रोग्राम और आपके बात करने का अंदाज बहुत कमाल और मुनफरिद है, अल्लाह राजी हो आपसे, खुश हो। मैं पेरिस फ्रांस में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, एक सॉन्ग लगा दो, सज्जाद अली का सॉन्ग है, मैंने एक किताब लिखी है, ये सॉन्ग है, मैंने एक किताब लिखी है, मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है जगह बता दो, मुझे तो वही याद आ रहा है। आपको और आपके साथ साथ सब सुनने वालों को और आपकी पूरी टीम को मोहब्बतों भरा सलाम और दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी फरहाद क्या चाह रहे हो, सुबह सुबह जो है ना वो आप ये रसगुल्ले और क्या भेज रहे हो, इतना मीठा। हमदुल्ला मला खेल हमारे साथ कहते हैं, जैसे फूल अपने वजूद की गवाही अपनी खुशबू से देते हैं, ऐसे ही बंदा मोमिन अपने ईमान की गवाही अपनी खूबसूरत अखलाक से देता है, बहुत अच्छी बात। सलाम कहती हैं, आप कहते हैं मैं हूं हमदुल्ला मला खेल फ्रॉम कोयटा, वेलकम टू द शो, वेलकम जी। मोहम्मद नईम टेलर साहब हमारे साथ मौजूद, गुड मॉर्निंग कहते हैं, बहुत शुक्रिया। नौमी एन जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, थैंक यू सो मच।

और कहते हैं यहाँ साहब कह रहे थे कि सुबह की क्या तैयारियां की, मैंने कहा जरा मैं बताती हूँ ना थोड़ी देर तक कि सुबह की क्या तैयारियां की, ताकि आपकी बेगमात भी सुन सकें और वो भी फिर आपको कहें कि चलो जी मैनू लेके दो वो ऐ चीज़ा कहते हैं खर्चे करवाए हैं, खर्चे तो नहीं करवाए मैंने, ये तो मैंने छोटी मोटी देखें आप अपने मैं कहीं पढ़ रही थी कि आप अपने घर वालों पर जो खर्च करते हो ना उसका भी सवाब होता है आप पे, आपको सवाब मिलता है, तो इजाज़ साहब आपको सवाब मिलता है इसका और घर का माहौल अलग अच्छा रहता है, तो क्या ही चाहिए अगर छोटी छोटी चीजों में घर का माहौल अच्छा रहे तो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, कहाँ है कोई भी नहीं है, ऐ वही झूठी झूठा 04221100101 डायलिंग नंबर। लेकिन अभी मैं आपके कमेंट्स शामिल करूंगी, कमेंट्स करने के लिए एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे आप जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट कीजिएगा और कमेंट करके हमारे से शामिल हो जाइएगा।

जी शक्कर भंडारे मौरा पिया मुझसे मिलन आया हूँ। कैसा लगा आपको ये गाना? वैसे मेरा भाई मुझे सुन रहा है, कहता है गाने तो बड़े अच्छे लगा रही हूँ। अच्छा इजाज़ साहब कह रहे थे, कहते हैं कि सुबह के लिए क्या तैयारी की है? देखिए आप, तैयारी तो करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। हर दिन के लिए आपको एक मुनासबत होती है ना, लेकिन ये महीना जो है, ये महीना ही बड़ा ही पुरखलूस और रहमतों बरकतों भरा है, जैसे मैंने पहले बात की। तो इसके तो हर दिन की तैयारी करनी चाहिए आपको, हर लम्हे की, हर आने वाले वक्त में जो है ना, वो इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। महफिल का इनेकाद करें आप, दुरूद पाक की महफिल का इनेकाद करें आप, इकट्ठे बैठ जाएं, अच्छी बातें करें, ये भी एक इबादत है। जब आप अच्छी बातें कर रहे होते हो ना, और आपकी उन बातों से कोई इंसान सीख जाता है, उस वो डिप्रेशन से निकल जाता है। और आजकल के दौर में तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, मुझे जो नज़र आती है, वो तो डिप्रेशन है। हर इंसान को कोई ना कोई डिप्रेशन है जी। किसी को कोई घर में है तो उसको घर के मामलात का डिप्रेशन है, कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसको जॉब के मामलात का डिप्रेशन है, कोई स्टडी कर रहा है तो उसको स्टडी का डिप्रेशन है, अदर देन बहुत सारी चीज़ों का डिप्रेशन आप साथ में लेकर चल रहे होते हो। कभी आपके जो सोशल मीडिया लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उनको अपनी रेटिंग का डिप्रेशन होता है कि भाई फलां चैनल की रेटिंग जो है वो ज़्यादा आ रही है, हमारी रेटिंग इससे कम है, तो मुझे कंटेंट कैसा दें। मतलब ज़िंदगी में आप जब तक सोचते हो ना, तब तक आप चीज़ें जो है ना, वो डिप्रेशन में ही चलती हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन मुझे जो लगती है चीज़, वो ये है कि अपनी जो जिस टाइम पे जिस फेज से आप गुजर रहे हो ना, उससे मुतमईन होना सीखें। जब आप अपने आप से मुतमईन होना सीखेंगे, अपनी चीज़ से मुतमईन होना सीख जाएंगे ना, फिर आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे और आप कहेंगे जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा तो इसके लिए कोई बेहतरी थी। और ज़िंदगी में मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हमेशा आपसे शेयर करती हूँ, बिकॉज़ मैं इसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करती हूँ, इम्प्लीमेंट करती हूँ, कि आपकी ज़िंदगी में कहीं पे बहुत ज़्यादा कुछ तलखी है ना कुछ ऐसा हुआ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर भी देखें बिहाइंड द रीज़न, देखें कि क्या रीज़न थी और इसके पीछे जो वजह है, मतलब क्या चीज़ होनी चाह रही है। अगर बच्चियों की मैं बात करूँ ना, देखिए हमारा लेडीज़ लाउंज प्रोग्राम है, और इसका एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है कि हम ख़वातीन के हवाले से हर टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। बच्चियों की अक्सर शादियाँ नहीं होती, लेट हो जाती हैं, तो उनको देखा जाता है इस तरह से, ये उनके बात की जाती है कि और बेचारी की शादी नहीं हुई है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में आने का मकसद सिर्फ शादी नहीं है। देखिए शादी एक हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, आपकी वो किताब का एक हिस्सा है, एक आप कह लो एक चैप्टर है, पूरी किताब थोड़ी ना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप उस टाइम तक शायद अल्लाह ताला आपसे कुछ और काम लेना चाहते हो, और अगर आप अपने इर्द गिर्द निगाह डालोगे, आप अपनी ज़िंदगी पे निगाह डालोगे, या आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियां या बहुत सारी चीज़ों को जब देखते हो ना, तो फिर आपको समझ आती है कि वाकई अगर शादी हो गई होती। मैं ये नहीं कह रही कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, एक अच्छे टाइम में शादी हो जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है ना, किसी को ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है ना, आप अपने काम से काम रखें, आपको क्या लेना देना भाई। और अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि किसी बच्ची के माँ बाप से ज़्यादा आपको फ़िक्र नहीं हो सकती उसकी शादी की, उसके जो घर वालों को फिक्र होगी ना, उससे ज़्यादा आपको फ़िक्र नहीं हो सकती। इसलिए ज़्यादा फ़िक्रमंद ना रहा करें, अपने घर की फ़िक्र करें, अपने कामों की फ़िक्र करें, अपनी चीज़ों की फ़िक्र करें, दूसरों की फ़िक्र से आज़ाद हो जाएं। अपनी ज़िंदगी में थोड़ी टेंशन है, आपने अब किसी की शादी की भी टेंशन आपने लेनी है तो फिर क्या ही करना। इसलिए जो है ना, ज़िंदगी में शादी एक हिस्सा है, उस हिस्से को इन्जॉय करना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि शादी हो गई है, तो फिर भी ऐसा नहीं है, वो जो पहले कह दिया जाता था ना कि हुन तेरा इत्थों डोली उठी है तो जनाजा ही आए वापस, उस दरमियान उसकी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हो जाता था। तो उसमें भी अगर हो गई है और आपको लग रहा है कि ये डिसीजन सही नहीं है, या ये आने वाले 20-25 सालों में भी ये शादी यहीं पर खड़ी रहेगी, या ये यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट या मेरी वैल्यू या मेरी

0: जो है वो एक एक यही पॉइंट होगा, मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, मेरी अपनी बात जो है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए, फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये हूँ हो गया है तो बस, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी का फैसला चेंज करने का हक आपको है। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं।
1: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में जैतून की पैदावारी सलाहियत को खुशहाली में बदलने के लिए पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा किया है। बैन-उल-अक़वामी सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजन समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी बहाल होने के साथ तालीमी इदारों में भी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो चुकी हैं। अफगानिस्तान में अस्करियत पसंद गिरोहों की मुसलसल मौजूदगी और सरगर्मियों पर बैन-उल-अक़वामी तश्वीश बरकरार है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में जैतून की पैदावारी सलाहियत को खुशहाली में तब्दील करने के लिए, उन्होंने इस्लामाबाद में पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान खुर्दनी तेल की मकामी पैदावार बढ़ाकर सालाना 40 करोड़ डॉलर की बचत कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन जाहिर किया कि पाकिस्तान चंद साल में खुर्दनी तेल की पैदावार में खुद कफील हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान में जैतून की काश्त और पैदावार के फरोग के लिए तआवुन पर इटली की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव
3: 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे। क्यों जी, कोई शक है क्या?

वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक, अलग ही एक वाइब है। सुना दियो सारा कुछ उन्होंने। बाज दफा कुछ गाने होते हैं ना, आप डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं कह सकते, आप गाना सुना देते हो। दिस इज फॉर यू, स्टिक अराउंड जी।

0: 042-111-0101. Assalamu alaikum ji. Hello. नहीं बोलना, फिर मर्जी है ना फिर आपकी, ऐसे करते हैं आप, आपकी कॉल अटेंड कर लो तो फिर कहते हैं कि नहीं बोलना, और जब कॉल अटेंड ना करो फिर कहते हैं आप कॉल अटेंड नहीं करती. अस्सलाम वालेकुम जी.
1: जी वालेकुम साहब, आपका हमीर फुलका बात हूं.
0: अब्दुल हमीद साहब जल्दी बताइएगा,
1: मेरी कॉल ड्रॉप हुई है, बुला भैया दा हड्डा मारे. चलो जी दुआ नु देनी चाहिए ना, बाकी ना दुख तो होना ते अभी तो भला ही आना कर ना.
0: क्या कहिएगा
1: आपी, बचपन की गल मैं तुम दसा, मैं ना छोटा जा कोई 5-4 साल दा बच्चा मुंडिया दे नाल ना चल गया जामू ते चढ़ गया. मैं तेज बड़ा हुंदा सी छोटा हुंदा,
0: ठीक है,
1: जाम नू चल गया उतो फिर कंध पर नहीं आया थले, डाना मेरे तो बाहर आया तो मैं पहलो थले डिगा.
0: सही है,
1: मेरा सिर पाट गया, फिर मेरे 5-4 सिर नू टांगे भी लगे,
0: ठीक है.
1: तो अजे तक मेनू बड़ा याद है, मुड़ के आज तक मैं जाम नू लागे नहीं गया.
0: ये सही है, अच्छी बात.
1: आपी हजूर भी अच गल शाम प्यार कवो ते गल
0: जी जी जी जी
1: ना प्यारे आका ना एक ना वाकया होंदा, नौकर ते कनीजा ना उठ पे चारन,
0: ठीक है,
1: ते सरकार आ गई उधरों, उन्होंने पूछा भी आ सुरख रंग दा उठ वेचना,
0: ठीक है,
1: उन्होंने कहा जी मालक इत्थे है तो नहीं तुसीं लै जाओ. उन्हां उठ लै के चल गए,
0: ठीक है,
1: ते उन्हां दा जिहड़ा मालक सी ना ओह आ गया,
0: ठीक है.
1: नौकर ते कनीजा नूं पुछण लगा भी ओह सुरख रंग दा उठ किथे,
0: ठीक है,
1: उन्हें कहा जी असीं वेच छड्या,
0: ठीक है,
1: उन्हें कहा पैसे लै लए नहीं जी पता ही कि तुम गया, उन्हें कहा कोई पता नहीं, उन्हें कहा मालका सोहने बड़ा ही अभी ओनू वेचते रह गए, वो उठा वेचते रह गए, उन्हें कहा वो जरूर आएगा, नौकरा ने किया वो सोना ना आ गया, जो आया उन्हें कहा वो आ गया जी, तो जो मालक ने पूछा सरकार ने पूछा भी उठ तू मालक, उन्हें कहा नहीं सोने मालक मैं नहीं तुसी मालक जी, गल च पला पा के रोया, उन्हें कहा तुसी मालक जी असि ते नौकर गुलाम.
0: माशाल्लाह बहुत वधिया प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कॉल करने का.
1: जी रब रखा.

0: चलिए। जजाक अल्लाह
1: माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच सजाद, बहुत शुक्रिया।
0: सब तो और आपका रवि की बहुत बहुत मुबारक।
1: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है सजाद अली लाडला, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और जैसे अभी बात की ना कि बाज़ार सजाया करते थे, बहुत सारी चीज़ें, मैं अक्सर ये चीज़ सोचती भी हूँ और गाहे बगाहे कहती भी हूँ कि देखें, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वहाँ पे खुशी, इन दिनों की खुशी को मनाने के लिए आप चीज़ें करते हैं, तो कहीं पे कोई मज़ायका नहीं है। आप सेलिब्रेट करें हुदूद में रहते हुए, हाँ इतना ज़रूर होना चाहिए कि कहीं पे

0: ये दिल आपका हुआ। वेलकम बैक जी, 12:29 हो चुके और 12:29 PM ऑन द डायल। और बात हम कर रहे हैं बचपन की कुछ यादों के हवाले से। आज हम कर रहे हैं अब की जनरेशन और तब की जनरेशन में कितना गैप था, कितना फ़र्क था। अब तो बहुत सारी चीज़ों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है हमने। जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, तब कल मुझसे कोई कह रहा था कि आप कोई डिसीजन अगर आपने लेना है ना, तो फिर ठीक है, इतने ज़्यादा मशवरे ना करो, बस ठीक है डिसीजन ले लो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मशवरे करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे किसी चीज़ के बारे में। आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना कन्फ्यूज़ होगे। आप खुशी से जो चीज़ कर रहे हो आप करो ना। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो फिर वो अच्छी है, और अगर आपकी नीयत उसके बिहाइंड पे किसी को गलत साबित करना है, या कोई किसी की दिल आजारी है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो दिखावा है, तो फिर वो गलत है। बस ये इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। कमलनाथ हमारे साथ। जुबिया, मैंने बचपन में बड़ी ईद पर मोहल्ले में बंदा हुआ बैल को खोल दिया था, फिर पूरे मोहल्ले की उस बैल ने अच्छा नहीं तो कमल आपने बैल खोल दिया था। अक्सर होता है ना, बैल आपके पीछे लग जाता है, तो ऐसा नहीं हुआ था कि बैल आपके पीछे ही लग गया। फिर कहते हैं अवार्ड यहाँ, ये बात तो सही है जी, कोई हाल नहीं इस बात अच्छा ए, मेरी उत्तू नंगी ये बात मेरे सर से गुजर गई है। कमल नाज कहती हैं गॉड हैज वेल्डेड, बहुत अच्छा जी। रमज़ान गुजर हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहते हैं जी, अटेंडेंस लगा दीजिए गुड मॉर्निंग का आपने। उज़मा इजाज़ हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम कहती हैं। वालेकुम अस्सलाम। 04221100101 अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह
1: बात करम क्वेटा साहब, आप लोगों को दूसरा नंबर अभी मेरे ख्याल से बंद हो गया।
0: पता नहीं अब ये नहीं मुझे पता,
1: वो 04299920660 अब ये नंबर है 04221100101।
0: वाओ, आपने हमारी इतना इजाफा कर दिया इन्फॉर्मेशन
1: में।
0: अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हो तो मैं 04221100101 ही कह रही हूँ डायल करने का।
1: ठीक है, वो तो हर आदमी यही कह रहा है, लेकिन जो लिसनर डायल कर तो वो ये नंबर नहीं था, वो ये नंबर था 042।
0: अच्छा चलो, आपकी मेरे साथ बात तो हो गई ना, नंबर कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। मुझे ये बताओ कि क्या कहना चाहोगे।
1: बिल्कुल आती है आपकी शुभ ढूंढा
0: हूँ। कहती हैं कि जो आपको वक्त मिला ना उस वक्त में काम की बात कर ले। आपने सारा टाइम ही जो है ना वो 042 और 99223 में गुजार दिया और कॉल कट गई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम बाजी, की हाल है सर?
0: कौन हमारे साथ, कहाँ से?
2: अख्तर राजपूत, बेजा रोड से।
0: अख्तर राजपूत साहब क्या कहिएगा?
2: बहुत सोना प्रोग्राम, बहुत बढ़िया सर कर रहे हो,
0: बहुत शुक्रिया।
2: मोबाइल नंबर को मैं 0607 पे रहना सर, 1 नंबर आता नहीं जानता, मैं तो ही कॉल करना है इस नंबर पे।
0: ओके हो गया। अख्तर राजपूत साहब, बचपन में पहाड़ियाँ बनाई कभी?
2: पहाड़ियाँ की बनाए और ना चलाते ना सर, पैसे बना के ना मूझ लाते चढ़ते पीए के जेड़ी।
0: अच्छा,
2: और टूट गई तो मैं आ गया थल्ले, फिर बाद मुझे सट्टा बज गया। तो बचपन से बड़े खेल होते थे बचपन से बाजी।
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है।
2: बाजी आज गीत सुना दे।
0: क्या सुना दे?
2: उर्दू फिल्म का सुना दे प्लीज।
0: कौन सी फिल्म का? अब पता नहीं कौन सी फिल्म का आपने गीत कहा है, जोन सा भी कहा है चले सुना देंगे। अभी आपको मेरी पसंद का ही गीत सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ, पता नहीं क्यों मुझसे पंजाबी और उर्दू मिक्स मैसेज लिखा जाता है, बस बर्दाश्त करने का शुक्रिया आपका। सलामत रहें जी। अच्छा जी, अब काफ़ी अरसे बाद मेरी कॉल मिली है। अच्छा जी, मिल तो गई ना। फिलहाल अभी तक तो शो अच्छा है, हो रहा है, बाद का कुछ पता नहीं। हाँ ये भी सही है। کیا خیال ہے؟ ایک کال سنیں 04-2111-0101. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. کیا حال ہے زبیہ شفیق؟ مجھے بڑی پیاری ساجدہ جی.
0: ساجدہ جی کیسی ہیں آپ؟
3: ہاں جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک.
0: ساجدہ جی بچپن میں کوئی پہاڑیاں بنائی ہیں آپ نے؟
3: ہاں جی.
0: تو ساجدہ جی کیوں بنائی ہیں آپ نے؟ ساجدہ جی پہاڑیاں کیوں بنائی ہیں آپ نے بچپن میں؟ ساجدہ جی بولیں تو صحیح نا. ہیلو ساجدہ جی کتنے گئے ہو؟ ہیلو
3: ہیلو.
0: ہاں ساجدہ جی بول نہیں رہی ہیں آپ.
3: ہاں میں کہہ رہی ہوں بچپن میں نا پہاڑی دیکھتے تھے پوری رات جاگتے رہتے. بھائی بناتے تھے اور میرے بڑے بھائی نا بابا بنتے تھے. وہ پٹے کے نیچے نا بچے کو بٹھا دیتے تھے, اوپر پنکھا ہوتا تھا. تو وہ لڑکیاں جو آتی تھی نا پہاڑیاں دیکھنے, وہ کہتی بابا جی اگر آپ بابا ہو صحیح تو یہ پنکھے کا پھونک مارے چل جائے گا. وہ مارتے تھے چل جاتا تھا جو کام کہتی تھی نا لوگ تو وہ ہو جاتا تھا. وہ کہتی یہ تو صحیح بات.
0: اچھا پہاڑیوں میں
3: بہت مزہ آتا تھا ساری رات دیکھتے تھے.
0: یہ نیا ہے میرے لیے.
3: کیا
0: یہی دلہا دلہن بناتے تھے اور وہ ڈانس کرتے تھے اور ہم ساری رات دیکھتے؟
3: ہاں لڑکا دو لڑکے ہوتے تھے دلہا دلہن بنے پہاڑی کے پاس نا کرتے تھے. لوگ آتے تھے پیسے دیتے تھے ان کو کوئی, یا پھر اور بھی طرح کافی ہوتے تھے. تو ہم نا اسلام پورے سے لے کے
0: ٹھیک ہے. چلیں ساجدہ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ. آپ کی آواز جتنی کٹ رہی ہے نا جتنے سلام دیے آپ کے پہنچ گئے ہوں گے کٹے کٹے.
3: سب کو سلام میری طرف.
0: اوکے ہو گیا. ہمارے ساتھ ساجدہ جی موجود تھیں.

0: तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अजला दा सोनी ए प्यार नी। 04-2111-0101। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
0: मैं प्यारी हूँ।
1: माशाल्लाह से।
0: आप कैसी
1: हैं?
0: आप कैसे?
1: अल्लाह का शुक्र, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी। क्या कहिएगा फायजा?
1: मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम बचपन में देखते थे तो तब बहुत ज्यादा ये चीजें ना इन थी, लेकिन अब ना ये बहुत ज्यादा कम होती जा रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हमने तो अपने बचपन में देखा हुआ है कि जैसे कि कुएं वगैरह भी होते थे, तो वो मछली का तालाब बना के उसके अंदर वो कछुए वगैरह मछलियाँ इतनी भरी भरी छोटी छोटी सब होती थी और काफी ज्यादा सजाया होता था, वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब ये ना चीजें वो नहीं रही है पहले जैसी, अब ना बहुत ज्यादा कम हो गई है। अभी बाज जगह ऐसा हो तो मैं कह भी सकती, लेकिन अब ना सिर्फ फ्लाइटों तक ही ये महदूद रह गए हैं। अभी इस तरह का कुछ नहीं होता जो हमने अपने बचपन में देखा है।
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, सही कह रही हैं आप। और क्या कहिएगा?
1: तो जब देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी भी मेरी कजन वगैरह सब जाती हैं देखती हैं, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता क्योंकि वो जो चीजें थी ना देखने वाली, क्योंकि वो रही नहीं,
0: वो रही नहीं। और जिसने कहते हैं बहुत अच्छा टाइम देखा हो ना,
1: हाँ,
0: उसको बड़ी तकलीफ होती है फिर जब वो चीजें कम हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है,
1: बिल्कुल ऐसी।
0: तो बहुत शुक्रिया फायजा।
1: छोटे बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है इस बारे में।
0: बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसी है।
1: बाकी आपका शो बहुत अच्छा और मैं सुन रही थी, सभी सुनने वालों को सलाम, खुश रहें, सलामत रहें।
0: फरा जी आ गई हमारे साथ, फरा अफजल सुन रही हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइस लिसनिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टे ब्लास। अक्सर मुझे पीर को मैसेज कर रही होती हैं, लड़की तुम आई नहीं। मैं कह की हो गया बाजी, दिन चेंज हो गया मेरा, आखिरकार मिल गई मैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कमल नाज कहती हैं सुपर डुपर अमेजिंग शो, वाओ ग्रेट लवर्स रेडियो ग्रुप। ओके अच्छा जी, 04-2111-0101। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम, मैं फरी बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह फरी जी, आप सुनाइएगा।
2: शुक्र अल्लाह ताला का, पूरी मैनेजमेंट और आप सब आ गए, आपको आज ये डॉक्टर को सबको नबारा रब्बी लबल की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो।
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह। ये थे जी हमारे साथ फरीद जी, कहाँ से, चुबुर्जी से हमें सुन रही होती हैं। आज मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ, मैं पूछ ये रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि बचपन की यादों में आपको कौन सी ऐसी याद है जो अभी तक याद रहती है, और जब बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं वहाँ पे आपको ये बदलाव कैसा लग रहा है? जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे बाज़ार सजे होते थे और फिर खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो भी दस्तयाब होती थी, जो आपको मिलती थी। क्या ख्याल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी।
3: जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइएगा।
3: हाँ जी, मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बात कर रहा हूँ।
0: क्या कहेंगे शहजाद साहब?
3: जी मैं तो ये बता रहा हूँ, जो हमका जो बचपन गुजरा है ना वो बहुत अच्छा गुजरा। हम बहुत पहाड़ियाँ बनाते थे,
0: ठीक है,
3: और जो भूरे के साथ जो 7-8 कलर बनाते थे हम जी, हाथों को कलर, चेहरे को कलर भी लग जाता था।
0: ऐसे ही है, ऐसे ही है।
3: तो माशाल्लाह बच्चे जो आते थे ना बहुत शाबाशी को पैसे भी फेंकते थे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।
3: हाँ तो एक दफा ना बच्चों जो खिलौने लेकर आए थे ना बच्चे, उनके साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, छोटे छोटे बच्चे, तो वो अपने अपने खिलौने वापस लेने आ गए।
0: ये भी होता था, पहाड़ी अपने उरूज पे होती थी और लड़ाई हो जाती है, कहते थे जाओ मेरे खिलौने वापस करो।
3: तो मेरे खिलौने दे दो, एक का जहाज, एक का कोई टैंक था, तो ये बात हो जी।
0: और अक्सर बात ऐड दी है, एंड में जो होता है ना वो मिलके पहाड़ी बनाई होती थी, एक के पास खिलौने खिलौने रह जाते थे, एक के पास पूरी पहाड़ी रह जाते थे।
3: ऐसे ही है जी। तो माशाल्लाह वो वक्त नहीं आने जी जो आजकल जब वक्त है ना वो बच्चों में वो बात नहीं रही।
4: बिल्कुल ऐसी है, सही कह रहे हैं आप।
3: जो आजकल जो मोबाइल पे ये वो ये उतनी नहीं बात रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं जितनी गुंजाइश होती है मैं ना सुबह भी नाश्ता लगाना है मैंने।
4: अच्छा जबरदस्त, जो बस इधर भी भेज देना
3: आप तो इधर तो मैं बांटूंगा कि उधर आऊंगा
4: नहीं तो दसना जरा सी उधर आई आएंगे।
3: अच्छा चले शाहबाग चौक में आके
4: उधर आके हम पूछेंगे शहजाद साहब कहाँ लगाया आपने नाश्ता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये अच्छी उन्होंने बात की। अरे यार एंड भी हो जाए अक्सर लड़ाई और एक ही हो पहाड़ी, वो रंग बुरा उसने इकट्ठा किया और दूसरे की हूँ वो खिलौने, लड़ाई हो गई दोनों की खिलौने के पास चले गए बुरा। बड़ी खूबसूरत पहाड़ी बनी है जी, कलरफुल पहाड़ी है और कलर ही कलर है उस पर, खिलौने कहाँ है खिलौने वो पड़े हुए हैं। होता है ना अक्सर ऐसा। 04221001 अस्सलाम वालेकुम जी।
5: तो
4: अस्सलाम वालेकुम जी।
5: हेलो, वालेकुम अस्सलाम जुबिया शफीक साहब, आपको और तमाम सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम और जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो।
4: बहुत शुक्रिया जी, कौन हमारे साथ कहां से?
5: मैं मोहम्मद सलमान बाग सलमानबाग लाहौर से बोल रहा हूं।
4: सलमान साहब क्या कहिएगा,
5: मेरी ये पहाड़ी बनाई
4: कभी?
5: हाँ जी, बढ़िया बढ़िया बनाई और वो जो पत्थर कई चमकीले हम दूर उनके लाते थे बड़ी बड़ी दूर से। और मैं आपको शाबाश देना चाहता हूँ कि आपने ये इस मौके पर सीरत नबी पे ये बात आप कर रहे हैं। बाकी तो मैं चाह रहा था कि ये दो दिन बाकी चैनल भी सारे हैं ना जो सारा साल हम गाने सुनते हैं, ये दो दिन नबी की सीरत ही बयान करते सारे।
4: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है।
5: जैसे हमने जश्न ईद मिलाद नबी पे हमने अपने प्यारे मुल्क की बातें की, मैंने आजादी मुबारक पे दो केक काटे थे, एक आपकी आंटी का उनकी सालगिरह थी, एक जश्न आजादी का। तो वो हमने बड़ी खुशियां मनाई और तराने पढ़े, तराने सुने, इसी तरह ये दो दिन भी हमें गाने बंद करके ना ये प्यारे नबी की सीरत बयान करनी चाहिए थी। जैसे आप जिक्र कर रही हैं पहाड़ियों का, बड़ी खुशी होती है ऐसी बातें कर। अल्लाह पाक हम सबको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने की तौफीक दे। बाकी आपका प्रोग्राम हम बड़े बड़ी खुशी के साथ।
4: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें मखसूस कर देनी चाहिए, जैसे हमने शुरू में बात की कि कुछ दिनों को मखसूस, जैसे मखसूस दिन होते हैं ना तो उनको इंजॉय करना चाहिए उस तरीके से जिस

0: क्या ख्याल है आपका? बैकग्राउंड पे जरा इसको रखने रखें।
1: सोने यार दी घड़ोली, माही यार दी घड़ोली, सोने यार दी घड़ोली बर्दी।
0: कहां से लाऊं अपने जैसा? बस कर दे लड़के। आप अगर अपने आप को बुरा कहोगे तो सब तो बुरा कहते ही हैं, इसलिए अपने आप को खुद अच्छा कहते होते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम आप जी।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
2: आप जी दोबारा आने की माफी चाहना आप जी। एक सानू कलाम आपका प्रवीण का सुना दे।
0: ये आपका प्रवीण, ये आपका प्रवीण, आपका प्रवीण लगाई हुई है मैंने अभी।
2: आप जी साधु सुनाना जी। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने।
0: ओके हो गया, मैं लगा जाऊंगी क्यू लिस्ट में।
2: मेरी बेगम है सुन रही है तो कह रही है कि मेरी भी आप ही सलाम कह दे।
0: वालेकुम अस्सलाम।

एक अलग लेवल का ही बैकग्राउंड शहरयार ने लगाया था जो एकदम से चल गया। बात हम कर रहे हैं बचपन की कुछ यादों पे। लेकिन हर इंसान जो है ना उसको खुश होने का हक है, और दूसरों को खुश देखने का ना, देखने के लिए मुझे लगता है जिगरा चाहिए। अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि आप कोई, अगर वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा बहुत ज़्यादा खुश है ना तो वो उस पर कोई ना कोई बात करेंगी, गॉसिप चलती रहेगी उनकी। हम ना दूसरों के ज़ाहरी हुलियों से देखकर उनकी ज़िंदगियों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, 99% ऐसा नहीं होता। सामने एक स्क्रीन पे जो चीज़ चल रही होती है ना वैसी होती नहीं है, बैक एंड पे चीज़ें और तरह की होती हैं। और दीन के मामलों की अगर हम बात करते हैं, मैं तो बहुत ही नाकसल इल्म हूँ, मुझे इतना ज़्यादा इल्म भी नहीं है, और मैं बात भी इस वजह से ही थोड़ा सा रिज़र्व रह के कर रही हूँ कि कोई, क्योंकि वो एक मुकाम ऐसा है ना जिस पे आपको एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ सोच के बोलना है, तो मुझे मेरी जो छोटी सी जो अकल है ना उसमें जो चीज़ आती है वो यही आती है कि आप दूसरों के साथ अच्छा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उन्होंने जो बातें आपको समझा दी, जो सिखा दी, जो बता दी, आप उन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को उस तरह से गुजारने की कोशिश करो। अगर आप अपनी जिंदगियों को, जिंदगियों में वो चीज़ शामिल नहीं कर रहे हो, लेकिन ये खुशियों को आप कहते हो कि मैंने सेलिब्रेट करना है, आप पहाड़ियाँ बना रहे हो, आप मिलाद कर रहे हो, आप लंगर कर रहे हो, आप वज़ाइफ कर रहे हो, आप उर्स मना रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों पे जुल्म कर रहे हो, आपकी वजह से दूसरे दुखी हैं, किसी की दिल आज़ारी कर रहे हो, दूसरों के माल ना हक खा रहे हो, तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है।

0: दिस इज रेडियो पाकिस्तान द न्यूज रेड बाय अब्दुल रहमान शीमा। फर्स्ट द हेडलाइंस। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड टर्किया फॉरेन मिनिस्टर हैव टेलीफोनिकली डिस्कस्ड बायलेटरल रिलेशंस, रीजनल डेवलपमेंट्स एंड अदर मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। इंटीरियर मिनिस्टर सेज सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड ड्यूरिंग मीटिंग विद ईरानियन प्रेसिडेंट इन तेहरान विच कंक्लूडेड ऑन अ हाईली पॉजिटिव नोट। पाकिस्तान हैज कॉल्ड फॉर सस्टेन्ड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन एंड फुल कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ टू एड्रेस द वर्सनिंग सिचुएशन इन सूडान। International concerns persist over the continued presence and activities of militant groups in Afghanistan. And now the news in detail. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Muhammad Ishaq Dar held telephonic conversation with Foreign Minister of Turkey Hakan Fidan today. Their discussions focused on bilateral relations, regional developments and other matters of mutual interest.
1: This is FM.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखला ने कहा है कि तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात के दौरान अहम पेशरफ्त हुई और मुलाकात इंतहाई मुस्बत अंदाज में ख़त्म हुई। सेनेट को आज बताया गया कि बिजली चोरी कम करने और तकनीकी मसाइल हल करने के लिए मुल्क भर में 20 लाख

0: लाख से जायद स्मार्ट बिजली मीटर्स नस्ब किए जा चुके हैं। और अफगानिस्तान में अस्करियत पसंद ग्रोहों की मुसलसल मौजूदगी और सरगर्मियों पर बैन अल-अक़वामी तशवीश बरकरार है। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

कितना रोया था मैं तेरी खातिर। कितना रोया था मैं तेरी खातिर। अब जो सोचूं तो हंसी आती।

0: Hi, this is FM 101. Hi, this is FM 101.
1: We'll be right back after this short commercial break.
2: Stay tuned.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: This is FM 101, where your spirit is set free.
4: 101 FM.
5: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें, जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो, ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
6: This is FM
3: 101. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: This is FM 101, where your spirit is set free.
2: 101 FM.
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: And now you are tuned into
7: FM
8: 101.
9: FM 101.
10: 101 FM.
11: FM 101.
12: FM 101.
13: FM 101. 101. 101. Tune in to One Above. FM
14: 101. Sunte rahiye. FM 101. 101. 101.

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम और तुर्की के वजीर खारजा ने टेलीफोन पर इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। ईरान ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे ईरान को मुफीद करार दिया है। वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान निजी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए अमरीकी माली मुआविनत के हुसूल पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चौधरी तारिक फारूक को आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। खबरें तफसील के साथ। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने आज तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान से टेलीफोन पर बातचीत की।
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी। न पेट्रोल का खर्चा, न आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का

0: अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: This is FM 101, where your spirit is set free.
2: 101 FM.
3: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी। न पेट्रोल का खर्चा, न आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइस तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
5: This is FM 101.
0: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
7: Sunte rahiye FM 101. सुनते रहिए FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सिमट रहे हैं सितारे फलक की बाहों में, गुबारे नूर है फैला हुआ निगाहों में। ये किस रसूल की आमद है बज़्म-ए-हस्ती में, सहर अज़ल से मुअद्दब खड़ी है राहों में।

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan, the news read by Hassan Gilani. First, the headlines. Deputy Prime Minister and Turkey's Foreign Minister have telephonically discussed regional developments. Iran has described Chief of Defense Forces' visit to Iran as fruitful. Finance Minister says Pakistan is focused on securing U.S. financing to serve as a confidence signal to investors. Pakistan and the United States have agreed to enhance cooperation in combating drug and human trafficking. International Forum for Justice and Human Rights has expressed grave concern over Indian atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी, ना पेट्रोल का खर्चा, ना आने जाने की फिक्र. वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जहां कहीं भी बैठे, किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं. फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें. वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदाम करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से

0: इस्तेमाल करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: This is FM 101, where your spirit is set free.
2: 101 FM.
3: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी, न पेट्रोल का खर्चा, न आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें, जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो, ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
5: This is FM 101.
0: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Mickey.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी, न पेट्रोल का खर्चा, न आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
3: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, built on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके

0: अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं सोनिया अदनान
1: और आमिर हाशमी।
0: पहले अहम खबरों का खुलासा।
1: नायब वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के वज़ीर-ए-खारजा ने टेलीफोन पर इलाकाई पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया है।
0: ईरान ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे तेहरान को इंतहाई मुफीद करार दिया है।
1: वजीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और इस्लाहात आगे बढ़ाने पर तवज्जो दे रही है, जिसका मकसद पायदार इक्तिसादी तरक्की में मदद देना है।
0: पाकिस्तान और अमरीका ने मनुष्यात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में तआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है।
1: सेनेट को आज बताया गया कि बिजली चोरी कम करने के लिए मुल्क भर में 20 लाख से ज्यादा स्मार्ट बिजली मीटर्स नस्ब किए गए हैं।
0: कौमी असेंबली में आज एक मुत्तफिका करारदाद की मंजूरी दी, जिसमें विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात को कल आला सतह पर मनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है।
1: वज़ीर-ए-आला पंजाब चार रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गई है।
0: पाकिस्तान रेलवे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में रेलवे मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए हैं।
1: पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 14 तारिक फारूक, आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर और अहमद रजा कादरी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं।
0: इंसाफ और इंसानी हकूक के आलमी फोरम ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है।
1: बांग्लादेश ने मक्का मुश्तरक दिफाई मुआहदे में शमूलियत के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है।
0: शायर अहमद फराज की 18वीं बरसी आज मनाई गई। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: नायब वज़ीर-ए-आज़म उमैद सागडार ने आज तुर्की के वज़ीर-ए-खारजा हाकान फिदान से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरतेहाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। फरीकैन ने चार इलाकाई ममालिक के वज़ीर-ए-खारजा के आइंदा इजलास और कसीरुल-जहती रवाबित पर भी तबादले ख्याल किया। ईरान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान को मुफीद करार दिया है। ईरानी सदर दफ्तर में डिप्टी मासलात और इत्तलात सैयद मेहदी तबातबाई ने एक बयान में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा इंतहाई अहम सिफारती कामयाबियों से भरपूर था और इसके नतायज जल्द मंजर आम पर आएंगे।
0: वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान निजी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए अमरीकी माली मुआवनत के हसूल पर तवज्जो दे रहा है। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर की करेंसी के तबादले की सहूलत के मामले पर वाशिंगटन की जानिब से मुस्बत रद्दअमल मिला है और उम्मीद है कि अगले 2 माह में जवाब मिल जाएगा। वजीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत बरामदात को फरोग देना चाहती है ताकि दरामदात पर इन्हिसार करने वाले मुल्क को दरपेश अदायगियों के तवाजुन के बहरान से निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि एक्जिम बैंक नई प्राइवेटाइज की गई, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बोइंग तैयारों की फरोख्त के लिए माली मुआवनत और अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरियों को अपग्रेड करने में मदद फ्राहम कर सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत पायदार इक्तिसादी तरक्की में मुआवनत और सरमायाकारों को एतमाद बहाल करने की गर्ज से इदारों को मजबूत बनाने, कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और इस्लाहात आगे बढ़ाने पर मुसलसल तवज्जो दे रही है। वो आज पाकिस्तान में जर्मनी की सफीर एनल एपल से इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। वजीर खजाना ने पाकिस्तान की हालिया मुआशी तरक्की को उजागर किया, जिसमें ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और मालियाती नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने की मुसलसल कोशिशें शामिल हैं। जर्मनी के सफीर ने मौशी इस्तेहकाम और इदाराजाती इस्लाहात के लिए हुकूमत की जारी कोशिशों को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दो तरफा मौशी और कारोबारी ताल्लुकात मजबूत बनाने में जर्मनी की मुसलसल दिलचस्पी का इरादा किया।
1: अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। फरीकैन ने खित्ते की मजमूई सूरतेहाल और अमन इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया।

0: उन्होंने पाकिस्तान अमरीका दोतरफा तआवुन मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने के तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया। फरीकैन ने मुनज़्ज़म जराइम मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी नाज़िम लोबोर ने खत्ते में मुस्तहकाम के फरोग के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुस्बत सिफारती किरदार को सराहा। सेनेट को आज बताया गया कि बिजली की चोरी कम करने और तकनीकी मसाइल हल करने के लिए मुल्क भर में 20 लाख से ज्यादा स्मार्ट बिजली मीटर्स नस्ब किए गए हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर तारिक फसल चौधरी ने वक्फे सवाल के दौरान एक सवाल के जवाब देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने से बिजली की तकसीम कार कंपनियों की वसूलियां बढ़ाने में भी मदद मिली है। वजीर सेहत सैयद मुस्तफा कमाल ने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों दस्तियाबी और मंजूरी से मुतालिक उमूर का जायजा लेने के लिए 6 वजारा पर मुश्तमिल काबीना कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि तिब्बी आलात के रजिस्ट्रेशन के अमल में पहले 2.5 साल दरकार थे, लेकिन अब ये अमल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सिर्फ एक फॉर्म पुर करके 20 दिन में मुकम्मल किया जा सकता है। सेनेटर अली जफर की जानिब से उठाए गए निकात का जवाब देते हुए वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्ला खान ने कहा कि हुकूमत पीटीआई के बानी चेयरमैन के तिब्बी मुआयने और इलाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऐवान का इजलास अब जुमे को सुबह 10:30 बजे होगा।
1: कौमी असम्बली ने आज मुतफिका तौर पर एक करारदाद मंजूर की जिसमें विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया गया कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत मौके को भरपूर अंदाज में मनाया जाए। ये करारदाद पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की जानिब से पेश की गई जिसमें इस मौके पर सरकारी नीम सरकारी और निजी इमारतों शहरों को सजाने और चिरागा करने पर जोर दिया गया। ऐवान का इजलास अब जुमे को दिन 11 बजे होगा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी जोश और जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। कल आम तातील होगी। वजारती मजहबी उमूर और बैरन मजाहिब हम आहंगी के जेर एहतमाम आज रात पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में खसूसी महफिल नात मुनक्किद होगी। तमाम शहरों में मिलाद के जुलूस निकाले जाएंगे जिसमें उलमा और खतीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के तमाम पहलुओं को उजागर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नत पर अमल करने पर जोर देंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से तफसील हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे मुज़फ्फर अजीज से।
2: वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश व जज्बे से मनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मरकजी तकरीब कल जिन्नाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इंटरनेशनल सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है जिसमें शिरकत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मंदुबीन की एक कसीर तादाद इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। वफाकी दारुलहुकूमत में ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस कल सुबह सितारा मार्केट G7 से बरामद होगा जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस उसी मकाम पर खत्म होगा। जुलूस के रास्ते को रंग बिरंगी झंडियों आरायशी मेहराबों और लाइटों से सजाया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं जबकि ट्रैफिक की रवानी और मुतबादल रूट्स पर ट्रैफिक बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के दर्जनों एहलकार ड्यूटी पर मौजूद होंगे। रावलपिंडी में भी ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस कल सुबह मरकजी जामे मस्जिद राजा बाजार से शुरू होगा जो अपने रिवायती मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। रास्ते में शहर भर से निकलने वाले छोटे बड़े दर्जनों जुलूस भी इसमें शामिल हो जाएंगे। जुलूस के रास्ते को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है और शुरका के लिए शरबत और ठंडे पानी की सबीलें और लंगर का खसूसी एहतमाम किया गया है। ईद मिलादुन्नबी के इस मरकजी जुलूस के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की खुशहाली अमन और इस्तेहकाम के लिए खसूसी तौर पर दुआएं की जाएंगी।
1: ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
3: Hey, we'll be back after this short commercial break.
4: Sunte rahiye FM 101 101 101.

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया है। ईरान ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे तेहरान को इंतहाई मुफीद करार दिया है। सेनेट को आज बताया गया कि बिजली चोरी कम करने के लिए मुल्क भर में 20 लाख से जायद स्मार्ट बिजली मीटर्स नस्ब किए गए हैं। कौमी असम्बली ने आज एक मुतफिका करारदाद की मंजूरी दी जिसमें विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात को आला सतह पर 20 लाख से जायद स्मार्ट बिजली मीटर्स नस्ब किए गए हैं। कौमी असम्बली ने आज एक मुतफिका करारदाद की मंजूरी दी जिसमें विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर

0: मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।
1: आप FM 101 से रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलाद उन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।
1: आप FM 101 से रिबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: 101 Time Check. It's 12 midnight.
1: आप FM 101 से रिबियल अव्वल की खसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

जो है शमसुद्दोहा, जो है बद्रुद्दुजा, जो है काफिल वाला, जो है नूरुल हुदा, जिनको यासीन उताहा पुकारा गया, जिनको अर्शे बरी पर बुलाया गया, जिनके सबके आलम बनाया गया, जिन पे कुरान सारा उतारा गया, उसी शाह के सबके रब्बुल।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।
1: बाइज कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे। तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे।

0: मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।
1: बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है।

0: मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।
1: आप FM 101 से रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं। जब

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मोमिनों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुल बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है।

अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग हुई तो उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको कहीं से भी मदद न मिलेगी।